印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

请收听 Sukhvinder Ho 上课 Mahadevan 唱的一首歌曲。

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से बालकांड भाग 125। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम पे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद होंगे हिंदी में समाचार।

केन्या डॉक्टर आदर्श स्वाई का मरायका तेहा प्रतिमा बांतुआन बारूप एम्पत कोमा लीमा तोन परले कप का मीडिया कपाटा मंत्री कैबिनेट बिडांका से हतान अदेन दवाले ती नायरोबी कमारेन बांतुआन इनी पर तुजुआन मन पर कुआत का सियापान केन्या दला मन चंगा क दरुतान क सियादान माशेराकेत अकीवात इबोला बंतुआन मेडिस तरसबूत मंचा को पाकेट आपे दे परांका ट्रांसपोर्टासी सैंपल थर्मोमीटर इन्फर्मेरा पर लिंडुगान वाजा सपातु बोट पर लिंडुंग तुगस बरात थर्त बरबागी पर लिंग कापकान पर चेहंगान इन्फेक्सी लाइन या कमिटे तिंगी इंडिया दी नायडोवी मंग इन्फॉर्मासी कान मलालुई उंगुहान मीडिया सोशल बाबा पंगिरीमान तेहा कदुआ बंतुआन मीडिया तरसबूत दिपरकिराकान अकांतिवा दलाम बरबरापा हारी मंदतांग दलाम बरबरापा बुलान तराखिर इंदे तेला मलायुरकान इलबी धारी एम्बद पुलु लीमा तौन बांदुआन मेडिस कपाडा अफ्रीका सेंट्रस फॉर डिजीज ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका चेडे चे उन्तुक मनी कातकान उपाय कर सियाब सियांगान दान रेस्पॉन्स तरहडप इबोला दि विलाया विलाया तरदम्पांग दि अफ्रीका हारी इनी अडाला हारी परन्यारा नेशनल पारा टांगल इनी दी ताहून सरेबू सम्मेलन रातु तुह पुलु तुजू सियान रान रेडियो प्रतिमा दी नगारा तरजबुत मंगुदारा दारिस्टेशन बॉम्बे दी बाबा नांगुआन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पारा टांगल दापान जूनी सरेबू सम्मेलन रातु स्थिग पुलु नाम इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बरूबा मंजादी ऑल इंडिया रेडियो हारी इनी मनिरोती पुरान पंतिंग पनियरान दलम पंग बांगुनान इंडिया जंगकुआन पंडिरी कांडान पलिस्तारियान बुराया पनियरान थेला मन माइनकान पुरान क्रूशल दलम पंग बांगुनान इंडिया सलामा पर जुआंगान कमडेकान रेडियो मंजादी सरना यांग अम्पू उन्तुक मनिय बालूर सरकान इन्फॉर्मासी दान मम्पुक पर पर सातुआन पास्का कमर डेकान रेडियो दी बरपुरान पंतिंग दला मवाजुआन लिथरासी क सडारान क सेहतानंद पंगताहून पर नातियान खसूसन्या दे विलाया पटसान पारताहून सरिबु संबिलान रातुस लिमापुलु नाम नामा आकाशवाणी दी अडोप्सी सबगाई नामा लंबागा पनियरा नेशनल लैनान विविध भारती दी रुंचुर काडर पारा ताहून सरिबु सम्मेलन रातु लिमा पुलु तुजु निंगान म्यूजिक फिल्म पॉपुलर से बेगाई कॉम्पोनेंट उत्तमा न्या सजग ताहून सरिबु सम्मेलन रातु जुअ पुलु तुजु रेडियो दिला मंजादी बागियान पंतिंग दारी हिक हिडुपान माशेराका ती नगारा इनी आकाशवाणी तरुस मनायनी माशेराका डिंगन मम्बरी खान इन्फॉर्मासी पंडिटी खान दान हिपुरान बुनार बुनार मम्बजूद खान मोतो न्या बहुजन हित्या बहुजन सुख सुख्या दमी कल से जेहतरान दन का भाग्यान ओरांग बान्याक हरी पनियरा नेशनल तिदा हान्य मराया का नखवा जुआन टेक्नोलॉजी ते तापी जुगा का कुआदान रेडियो यांग ताक लंका उले वक्तु दरम अम्बरी कान इन्फॉर्मासी पंडिरी कान हिपुरान सरता मन्यबुत कान बांगता यांग ममे जुग सैरिंग लांका लांका इंडिया मा जुदी अरा डिजिटल प्रिंसिप प्रिंसिप पनियरान लायरान पब्लिक तेता क्रूसल व मास्तिका रेडियो तरुस मंजादी मीडिया विचल बागी मशराकात इंडिया कॉमनवेल्थ गेम चेवेगा कदुवतिका अकान दी मुलाहारी इनी दी ग्लासलो स्कोटलांदिया टीम दारी तुजु पुलु एम्पात नगारा अकान बर पार्टिसिपासी दलाम अजांग यांग बर लांगसुक सलामा सपुलु हारी इनी पराई ओल मेडली ओलंपियाड नीले चोपड़ा मीराबाई चानू दलोवानिया बोर्गोहाइन दी जडवालकन कैली इंडिया दी चेवेगा दुआ रिबू दुआ पुलु ए नाम अजांग इनी हान्य अकान मम प्रतांडिंगान सपुलु चबांग ओलारगा सम्मिलान लबी सदिकित दी बांदेंगान बरघेमंग दुआ रिबु दुआ पुलु दुआ देंगन कॉम्पिटिसी यांग तरबसार दी एम्पात लोकासी दलाम कॉरिडोर सपांजांग लपान मील एथलेटिक रेनांग बोला बास्केट तीगा काली तीगा वालाप स्पीडा ट्रैक अंका बेसी बाउल्स सेना मार्केटिक बोला जा रिंग नेटबॉल तिंचू दान जूदो मासुक दालाम जदवाल पर तांडिंगान
कॉन्टिजेंट इंडिया तरदीद।

रहित सिमेंतारा इतू मंत्री पर्तहानान अमेरिका से रिकात पीठ हेस्थेग मंगतगान के पदा पदा सेना तोड़ बाबा रूसिया दांतियों को मम्बांतु ईरान दी साथ तेहरान कंबाली मलान चकान सरंगान तरहड़ाप कपल कपल कॉमर्शियल धन अमेरिका से रिकात मंगे कातकान ऑपरासी मिलिटल दी सेक्रेटर सलाद हॉर्मुज उक्रेना तरुस मलांजुतकान परलावान तरहड़ाप इन्वेस्टास इन्वासी रूसिया दिबावक फमिम्पिनान मिलिटर यंगबारू सतला प्रेसिडेंट व्लादिमिर जेलेंस्की मनमू ही तुहान पब्लिक दन मंबर हांतिकान बंगलामर तरतिंगान या उक्रेना तेला मंचातात कमाजुआन सिग्निफिकेंट आलम परंग ताहून इनी नमून करातान हुबुंगान अंतारा कपाला आंगोतान दरद यंग अकान लेंचार दान मंत्री परतहानान संपात मंचकान उपाय अमेरिका कदुआना हिलांग क हिलांगान जापतान मरेगा मनुसुल पलो बारकान बसार बसार पमरेंता यंग दिलाकोकान जेलेंस्की पिकान लालू कपाला अंगतान दारात यंग बारू मेयर जनरल माइकलो द्रापायती इम्पत पुलो तिगता हूँ मरु पकान बागियान दारी जनरासी बारू जनरल उक्रेना यंग मनीती करियर सलामा प्रतिमपुरान मलावान अग्रेसी रसिया सजाओ इनी सरिबू औरंग तेला मनिंगाल अकीबत वाहब इबोला दी कोंगो मनोरुत का मंत्रियान का ज्यादान कोंगो तरचाता दुआ रिबू एम्पात रातू सुजु पुलुती का कुसुस दलाम बाबा तरबारू इनी निंगन सम्मेलन रातू सम्मेलन पुलु सम्मेलन औरंग मनिंगाल दुनिया पिया का मंत्रियान मांगतकान बाबा सा तिटकान या तुजु रातू स्तिका पुलु तुजु पर्सेंट साथ इनी सेडंग मनलन जाए इसोला सेदन परावतान दिरुमा साकेत वहाब यांग दिम उम्मकान पाड़ा लिमा ब्लास मई इनी बिदारा दिस बर्थबा गयान बसार वहाब इबोला सबलूम न्या कारना वरस बुंदी बुग्यो यांग मंजादी पने बाब न्या बलूम व मिल्की वैक्सीन अताउ पंगो वतान यांग दिस तुजुई वहाब इनी जुगा तेला मनेले कान लभी वान्या कोरबान जीवा देंगन लाजू पने वारान यंग लभी चपात निवानिंगान वहाब मानापुन यंग परना तरचिता तरमसुक वहाब ताहुन दुआ रिबु तिगे बिलास सांपई दुआ रिबु एनम बिलास यंग दियांगाप सिबगा यंग तनारा दलाम सजारा देंगन लभी दारी से बिलास रिबु कम आतियान दारी सा तितिकान्या दुआ पुलु लापान रिबु खुसुस दमिकियां ताड़ी वर्तवरी था बड़ी कुतनिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आलिया।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

0: उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार

0: ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
8: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth centers.

0: comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption "Oil on the Boil Again," writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपये मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलावी टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र को भी तेज़ करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही जिसमें देही तरक्की ज़राअत समाजी बहबूद और दीगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई जिसमें हुक्मरानी को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेज़ी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने

0: अपनाई जानी चाहिए ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने पीएम कुसुम स्कीम की जरिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फायदा पहुंच सकता है। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायजा लिया जाए ताकि भारत की अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोजगार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
1: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की जरूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर खौज जरूरी है।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकिफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरान ही का फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जामे बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
2: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
1: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखना अंदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।

0: इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है, जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1,012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड ईएमसी को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालुर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 2 रोज़ा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निको सरदान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डेप्यूटीज़ के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून हैं। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफ़ी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज़ हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ़ुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ़ुज़ में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और ख़ासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ब उलैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता आ रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन, राग है बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे हैं शांति भूषण झा, हारमोनियम पर ललित सिसोदिया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर्वगंगा में आप सुन रहे थे नीता माथुर का गायन। राग था बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे थे शांति भूषण झा। हारमोनियम पर ललित सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप और उद्यमशीलता भारत में रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन बन गए हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन एक क्षेत्र में असफल होने पर व्यवसाय का परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मापदंड होते हैं। सबसे बड़ी बाधा आती है वित्तीय चुनौतियों की। व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सलेंस। अधिक जानकारी के लिए सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
2: दोस्तों, आज के कॉम्पिटेटिव दौर में केवल अच्छा उत्पाद या अच्छी सेवा ही किसी व्यवसाय की सफलता की गारंटी नहीं है। बदलते बाजार, डिजिटल तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बीच किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय रणनीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। वित्तीय रणनीति किसी भी

0: व्यवसाय की वो योजना होती है जिसके माध्यम से आय व्यय निवेश बचत और जोखिम प्रबंधन को संतुलित किया जाता है। यह रणनीति व्यवसाय को यह तय करने में मदद करती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभ और स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। इन सबके लिए एक अच्छे वित्तीय प्रबंधक, जानकार या सलाहकार की आवश्यकता होती है। हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
1: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।
0: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में हमें चलना पड़ता है। बिजनेस एक्सेलेंस के लिए इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाए इसके लिए, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
1: कमल जी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है। सो आरओआई जिसको कहते हैं, आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। अगर एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे तो आज के संसार में क्या वो सही है? आज मैं देखता हूँ कई सारी एमएनसीज हैं और कई एमएसएमई कंपनी है, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते और वहीं पे उनकी कई बार गलती हो जाती है।
0: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
1: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, एआई एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए। एआई से बचना नहीं चाहिए क्योंकि एआई हमारे साथ हमारे जीवन में है, इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं। एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए
0: जी।
1: और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है। मतलब कोई भी कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है।
0: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
1: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो एक किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है। अगर हमको विकसित भारत करना है तो इकोनॉमी हर तरह से आती है। इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं पर हमारी खुद की कंपनियों को भी एमएनसीज बनना चाहिए। हमारी कंपनियां बाहर जाके व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है
0: जी। और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसके भी सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाए?
1: बिजनेस एक्सेलेंस या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आज के दिन में कई सारे CFOs, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं। अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज से जो फुल टाइम CFO नहीं भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास एक पहले डॉक्टर होता था हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए। विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं हम जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो। सो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना
0: जी।
1: और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ ORSAP। ये बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आर का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, उन सबको पता हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें। और पी का मतलब होता है प्लान, अगर आप प्लान ध्यान करके चलते हैं और एक एक चीज का, जैसे हमने बताया, 3 साल के अंदर में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है, कोई नई से नई कंपनी भी।

0: लोन, तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
1: देखिए, छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं। वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें, प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
0: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
1: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्त रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, वो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सके, उससे 2-3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सके और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके।
0: जी जी,
1: सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें, यू कैन डू एनीथिंग।
0: आजकल देखा जाता है कि तकनीक का युग है, AI का भी युग है, डिजिटल तकनीक का युग है, तो इसके माध्यम से इसने पूरी कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। संस्था या कंपनी की सफलता के लिए ये डिजिटल तकनीक, AI वगैरह, ये सब कितना महत्वपूर्ण है?
1: ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको सक्सेसफुल कंपनी बनना है तो AI से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि AI इज हियर टू स्टे, वो यही है और हमको उसको साथ लेके चलना है। हम कोडक का एग्जांपल ले लें, कोडक पुराने जमाने के कैमरे बनाते थे, आज वो कंपनी खत्म हो चुकी है। पहले वीडियो कैसेट्स आते थे, आज वो वीडियो कैसेट्स नहीं है। तो हाउ वी कैन एक्चुअली डू बेटर, तो हमको टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ऊपर जरूर हमको साथ रखना है। रिस्क मैनेजमेंट के चार ही तरीके होते हैं किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए।
0: जी,
1: सबसे पहला तरीका होता है कोई अगर रिस्क आपकी तरफ आ रहा है उसको आप टर्मिनेट करिए, उसको आप खत्म करिए। सेकंड तरीका होता है कि अगर आप वो उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप ट्रीट करिए, कोई उसका इलाज करिए कि वो आपको इतना हानि ना पहुंचाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क फिर भी है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक बहुत सीधा उदाहरण होता है इंश्योरेंस। अगर आपके पास रिस्क तो रहता ही है कि कभी आग लग सकती है, कभी कुछ हो सकता है, तो उसका एक इंश्योरेंस करा लीजिए। इंश्योरेंस के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस भी हो सकती है और भी तरीके हो सकते हैं कि आप एक पार्टनर ले आए जिसको आधा आपने रिस्क दे दिया। और फाइनली जो एकदम बचा हुआ रिस्क बचता है उसको टेक करें। चार टी होते हैं, टर्मिनेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसफर एंड टेक। ये चार टी से आप किसी भी रिस्क को, अगर आप प्लान ढंग से बना रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं और ये चार रिस्क लेके चल रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकती है।
0: तो इसमें क्या फाइनेंस के लिए भी किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ये फाइनेंस के लिए करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल मॉडल अगर आप बनाते हैं, कोई भी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना कि आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग ये चार टी के अनुसार चल रही है कि नहीं।
0: जो मैनेजमेंट होता है उसमें किस प्रकार से इसे मैनेज किया जा सकता है?
1: जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट हर एक इंसान को, हर एक डिपार्टमेंट को टच करके जाता है, क्योंकि रिस्क किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर HR की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, अगर किसी कंपनी में अच्छे टैलेंट नहीं टिक रहा है या लोग नहीं टिक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो एक रिस्क है, उसको कैसे HR मैनेज करेगा, वो HR डिपार्टमेंट का काम है।
0: जी जी,
1: सेल्स का काम है कि अगर उनके पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो एक रिस्क है। फाइनेंस का काम है कि अगर वो ठीक से अपना कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क है। तो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल अगर हम लगाते हैं किसी कंपनी में, वो हर डिपार्टमेंट को टच करता है।
0: और वैसे देखा जाता है कि कभी भी किसी बिजनेस की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके एम्प्लॉई। और यदि संस्था अपने मानव यानी कि HR के विकास में निवेश करती है, उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, तो उसकी उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी में और उसकी क्वालिटी में दोनों में डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो इसे किस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है?
1: ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी आपने कमल जी, कि कोई भी संस्था है उसके चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं, और इंसानों को ट्रेनिंग की, उनको डेवलपमेंट की, का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहीं पे HR एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये देखने के लिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारा काम कर रहे हैं, उनका हम बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओनली हैप्पी एम्प्लॉयज मेक प्रोडक्टिविटी। अगर कोई अनहैप्पी है, खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है किसी चीज से, तो वो काम में भी मन नहीं लगाएगा, अल्टीमेटली कस्टमर्स खुश नहीं होंगे। आपने खुद देखा होगा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो किसी दिन, तो अगले दिन आपका मन नहीं लगता काम में, आप चिड़चिड़ाए से रहते हैं। यही चीज है अगर एम्प्लॉयज के साथ भी, अगर किसी एम्प्लॉय को किसी प्रकार की परेशानी है, उसका आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसका मन नहीं लगेगा काम में और अल्टीमेटली वो बैलेंस शीट में दिखाई देगा उसका असर। अगर हमने कोई एम्प्लॉय रखा और उसकी सैलरी हमने बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन हम उसको रोज प्रताड़ित कर रहे हैं, रोज डांट रहे हैं, क्या वो खुश रहेगा?
0: नहीं,
1: खाली सैलरी

0: हाइक एकमात्र चीज नहीं होती है। सैलरी हाइक तो है ही कि हमको एटलीस्ट सैलरी इस मार्केट के अनुसार देनी चाहिए, ऐसा नहीं करें कि किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी का फायदा उठा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, लेकिन साथ में उसका और बेनिफिट भी करिए कि कभी उसको अगर जरूरत है तो उसकी छुट्टी दे दीजिए, कभी उसको जरूरत है तो उसका ख्याल रख लीजिए, उससे बात ठीक से करिए, उसको एनकरेज करिए। अगर आपको उसको समझाना है तो एक मेंटर की तरह समझाएं जिससे उसको गाइडेंस मिल सके, और उसको ये समझाएं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक फाइल रखना हर एक एम्प्लॉय की, उसका गोल क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसकी गोल में उसका सहयोग करते रहें। अगर वो जनरल मैनेजर बनना चाहता है, कोई हमारे यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया है, जूनियर लेवल पे आया है, उसका गोल है मैं 10 साल में जीएम लेवल बनना चाहता हूँ, आप उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि 10 नहीं तो 12 साल में आप अपनी कंपनी में ही बना सकते हैं, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और साथ में वो भी ग्रो करेगी। कोई अगर चाहता है, जैसे आपने बताया कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, उसको बताना जरूरी हो जाता है कि अभी जो तुम काम करते हो इसके हिसाब से ये सैलरी शायद नहीं मिल पाए, आपको काम यहाँ पे ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपको ठीक करना चाहिए, इतना और बढ़ा सकते हैं, और उसको गाइड करें कि वो काम कैसे बढ़ाए, और अगर वो काम उस लाइक बनता है, कंपनी को भी फायदा होता है, तो डेफिनेटली हमको शेयर भी करना चाहिए।
1: जी, जो छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस हैं, एसएमई हैं, उनके लिए तो ये बड़े स्तर के लिए जो डिजिटल जो परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उनको अपनाया जो जाता है, उनको अपनाना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
0: ये एक धारणा है आज के दिन में जो कि सही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जो बहुत सस्ते ढंग से आपके लिए एक ऐप बना सकते हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अगर मेरे को डायरेक्टली रीच आउट करें मेबी, लेकिन कई सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्ट आपके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, कई सारे एआई मॉडल्स हैं जो आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्च नहीं करना पड़ता, और कई तो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे भी चलते हैं। तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपना खुद का एआई बनाइए, जो एआई अवेलेबल है उसमें से आप बहुत कुछ बना सकते हैं।
1: अभिषेक जी, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की भूमिका में रहे, तो आपने इन 23 वर्षों में जैसे कि आपका अनुभव है, उसमें आपने किस प्रकार का बदलाव देखा है?
0: ये बहुत बड़ा सवाल है। इस 23 वर्षों में मैं

ببینی آقایون، منو له کرده ظالم، به جسمم نمونده جای سالم.

हिजबे कांग्रेस आज रघुनाथ विनायक दोलकर वासित आराम भास्कर भागवत हमचिनीन नजदी के वैबुधन वे हमचिनीन बराये चंदीवा दर मंजिले रुद्र नारायण सिंह दर नई बस्ती व हमचिनीन दर खाना ये भागवत दर नागरा इकामत दाश अंजुमन जमहूरी खाहे हिंदुस्तान तवसुते बिस्मिल चैटर्जी सचिंद्र नाथ सानियाल व सचिंद्र नाथ बख्शी दर साले 1924 तश्कील दादे शुद पस दुजी ये कतारे राहन काकोरी दर साले 1925 इंग्लिस्तान सरकूबी फालियत है ये इनकलाबी राब अमलावर परसाद अशफाकुल्ला खान ठाकुर रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लहरी बराये शिरकत शान महकूम बे मार्ग शुदन आजाद केशव चक्रवर्ती व मुरारी शर्मा अस दस गिरी फरार शुदन चंद्रशेखर आजाद बादन बाकुमा के इनकलाबियों अस कबीले शिव वर्मा व महावीर सिंह अंजुमन जमहूरी खाह हिन्दुस्तान रा शिनाख्त आजाद हमचिनीन यक हमकारे नजदीक भगवती चरण वोरा के हमरावा भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु बराये इंतकाल अंजुमन जमहूरी खाह हिंदुस्तान बे अंजुमन सोशियलिस्ट जमहूरी खाह हिंदुस्तान दर साले 1920 तो हज बराये हसूल हदफ मुकदमाती ये हिंद मुस्तकल शान मबनी बर उसूल सोशियलिस्ट पे ऊ कुमक करतन आजाद इसराजीत उमदे अंजुमन सोशियलिस्ट जमहूरी खाह हिंदुस्तान बूद वो बराये इनकलाबियों ने मुतादीद दीगरी मानंद भगत सिंह यक नासे गर्दीद आजाद दर तारीख 20 हफ्तों में माह फेवरी साल 1931 बेशहादत रसीद वे राजगुरु व सुखदेव करारबूत बायक हमकार दर एल्फ्रेड पार्क दर अलाहाबाद दर तारीख 20 हफ्तों में माह फेवरी साल 1931 मुलाकात कुनन महाजा यक वतन फरोश महल शानरा बे पुलिस इंग्लिस्तान इफ्शा कर पुलिस बा चहल तने मुसल्ले पार करा आहते कर वो बरानहा गुरु लेबारी कर दे वह दर्जर याने दिफाइये खुद व सुखदेव राज जर्राह दीदन वह से पुलिस रा पा तपांचे मौसर हलाक कर व चंदीन तने दीगर रा मजरू साखते वो बराये सुखदेव इमकान पजीर साख अजान जा फरार शवा बसत गुलूरे बारी ये सीओ दो दकीके तूलानी ये जर्राहत शदीदी खुद उ इन ताहुद खुदरा दुरुस्त निगेदाश्ते के वे हरगिज जिंदे दसगी न खाशुद खुदरा बा आखरीन गुलूले हलाक कर तपांचाए कोलते चंद्रशेखर आजाद दर मुजये अलाहाबाद बीमारी से नुमाए गुजाश्ते शुदे हस जसदेव बराये मुर्दे सुजानी बिदू ने मुतले साख्तने उमे मरदुम बे जायगाह सुजानदनी के रसूल आबाद फिरस्ता दे शुद वक्ती के इन आश्कार गर्दीद मरदुम पार्क राबे मुहासरे गिरफ्तन जाय के इन हादिसे रुखदा दे भूत आना अलहे हुकूमत ब्रिटानिया शिया रहाई रा बुलंद करदन वो आज आजाद सिताइश निमुदे नामे अल्फ्रेड पार्क दरलाबाद जाय के आजाद जाने खुदरा अज दस्दादे मुजद्दन बे चंद्र शेखर आजाद पार्क गुजार दे शुदे चंदी नामोजिशगा दानिश कदे खयाबून व दीगर इतिहाई मुमी दर सरासर हिंद नीज बे नामे ऊ गुजार दे।

0: फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का

उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त

0: घर आंगन।
1: आवाज़ों का रिश्ता कोई सरहद नहीं जानता, और जो एक बार दिल से जुड़ जाए वो फिर कभी नहीं बिछड़ता। नमस्कार, मैं श्रुति पुरी
2: और रश्मि कुकरेती आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में,
1: जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर, और हमारे डिजिटल परिवार के साथ ही हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की झोली भर भर के बधाइयां।
2: जी, सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अनेकानेक बधाइयां। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के हमारे सवाल से, यानी कि आकाशवाणी से जुड़ा आपका कोई अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता है। पहले तुम
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह बॉबी फिल्म में कह रहे थे, कुछ ना कहूं चुप रहूं, लेकिन अब मुश्किल चुप रहना है श्रुति जी, क्योंकि घर आंगन में हम दोनों आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम सुनते हैं एक संदेश।
2: शायर की गजल।
3: नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयां शुभकामनाएं देती हूं। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत, सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। धन्यवाद।
2: पल दो पल
4: कौन
5: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं सौम्या मिश्रा, लोक गायिका, मैं के लिए सोहर गाते हैं, तो आइए मैं कुछ दो लाइन सोहर आप सबों के बीच सुना रही हूँ।

0: आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर हमारी ओर से भी रश्मि जी। और दोस्तों, सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर न हो तो और भी अच्छा। जीवन में हर इच्छा पूरी हो जाए ऐसा संभव नहीं। हम योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पर कई बार परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत आते हैं।
2: और ऐसे ही समय में ये विचार हमें धैर्य और विश्वास का संदेश देता है। अक्सर जो बात उस समय बुरी लगती है, वही आगे चलकर किसी बड़ी खुशी का कारण बन जाती है। इसलिए असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए।
1: इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है रश्मि जी कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करें और परिणाम को सहज भाव से स्वीकारें। जब भी मन के अनुसार कुछ न हो तो निराश होने की बजाय ये विश्वास रखें कि प्रकृति ने शायद आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ तय किया है। यही

अधिकतर रिटर्न भरने में आपको देरी हो गई है तो उसके लिए आपको जुर्माना भी लग सकता है, जो आमदनी के हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 तक का हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी दिनों की भागदौड़ से बचने के लिए आप अभी से अपने दस्तावेज तैयार कर लें और समय रहते ये काम निपटा लें, क्योंकि सही समय और सही जानकारी से भरा गया रिटर्न न सिर्फ जुर्माने से बचाता है बल्कि रिफंड भी दिला

0: में हाँ। इसमें बारीक नकाशी है, जालीदार झरोखे हैं, जो इसे देखने वाले हैं वो दंग रह जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि एक हिस्सा जो है इसका संग्रहालय के रूप में खोला गया है, जहां पटवा परिवार की तस्वीरें, उस दौर की जीवन शैली से जुड़ी कलाकृतियां और अन्य चीजें सहेजी गई हैं।
1: और इसी तरह ना राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र को खुली हवा की आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, क्योंकि नवलगढ़ में स्थित डॉक्टर रामनाथ पोद्दार हवेली संग्रहालय एक और अनोखी मिसाल है, जो 1902 में बनी थी ये हवेली, और ये अपने भित्ति चित्रों के लिए मशहूर है, जिसमें लोक गाथाओं और उस जमाने की सामाजिक जीवन को, जिंदगी को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है।
0: और राजस्थान से हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। वहाँ पे जो कोलकाता का मार्बल पैलेस 19वीं सदी की एक बेहद खूबसूरत हवेली है, इसे राजा राजेंद्र मल्लिक ने बनाया था। और हवेली की जो दीवारें

0: कि वो एक घड़ी हुआ करती थी। हमें पता चल जाता था ये फला फला कार्यक्रम आ रहा है तो क्या समय हुआ है, अगर समाचार आ रहे हैं तो क्या समय, और उसी समय के अनुसार हम तैयार हुआ करते थे। तो रेडियो का भी काम होता था और घड़ी का भी काम हुआ करता था। तो आजकल तो स्मार्ट जो फोन है वो काम करते हैं, लेकिन भाई रेडियो का जो समय की जो पाबंदी है, जो अनुशासन है, तो वो तो अपने आप में ही घड़ी है।
1: और देखो ऐसा है ना कि ये जो मेल है ना, मुझे तो एक अलमारी जैसा लगता है कि कभी भी कोई
0: एक
1: भी पुरानी
0: होता
1: भी,
0: है,
1: पुरानी भी वो
0: और
1: खोलनी हो ना।
0: श्रुति जब आपने अलमारी की अगर जब बात की तो भाई पुरानी अलमारियां खोलते ही कभी कभी हाथ किसी कोने में दबे एक डिब्बे तक पहुंच जाता है और उसमें रखी अगर पुरानी चिट्ठियां मिल जाए, वाह, जिनके कोने पीले पड़ चुके हों।

पहुंचते ही कभी कभी हाथ किसी कोने में दबे एक डिब्बे तक पहुंच जाता है और उसमें रखी अगर पुरानी चिट्ठियां मिल जाए, वाह, जिनके कोने पीले पड़ चुके हों, और उन्हीं चिट्ठियों के ऊपरी कोने में चिपका होता है एक छोटा सा रंगीन टुकड़ा जिसे हम कहते हैं डाक टिकट। उस दौर में चिट्ठी लिखना भाई एक पूरी

0: पहला डाक टिकट है, ये 1 जुलाई 1852 में जारी हुआ, पूरे एशिया का ये पहला डाक टिकट माना जाता है। इसके कुछ साल बाद पूरे भारत के लिए आधिकारिक तौर पर डाक टिकट छापे गए और धीरे धीरे ये छोटा सा कागज का हिस्सा जो टुकड़ा है वो हर घर की चिट्ठी का हिस्सा बन गया।
1: देखिए आज़ादी के बाद हमारे अपने महापुरुषों की तस्वीरें भी टिकटों पर आने लगी। आज़ादी की पहली वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी भारतीय टिकट पर आने वाले पहले भारतीय बने और उन पर 4 अलग अलग मूल्यों के टिकट जारी हुए। और ख़ास बात ये थी कि गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन पर ब्रिटेन ने भी टिकट जारी किया।
0: भाई वाह, तो ये छोटा सा जो टिकट है ना किसी देश के गौरव और इतिहास को कितनी खूबसूरती से समेट लेता है, यही तो कमाल है छोटे से कागज का। ये सिर्फ डाक भेजने का साधन नहीं है बल्कि एक देश की संस्कृति की एक चलती फिरती गैलरी है। दुनिया भर में फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह करने का शौक इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग टिकट जमा करने लगे और ऐसे लगा कि बिल्कुल पूरी दुनिया की यात्रा वो घर बैठे ही कर ले। सच में टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि हम तो कहेंगे ये इतिहास का एक जीवंत पन्ना है।
1: हाँ, और खत लिखना भी एक विरासत है।

0: घोल दिए हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। एक ही कला पूरे भारत में अलग-अलग कितने रंगों में जीवित है। आज भी राजस्थान के कलाकार इसे जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, डोरियों से बंधी हो या यादों से,
1: जी
0: हर कठपुतली अपने साथ एक कहानी लेकर आती है, और यही कहानियां तो संस्कृति की असली पहचान है।

0: रश्मि जी, आप देखो कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी श्रोताओं से विदा लेनी है
1: जी,
0: तो
1: कल के मिलने के लिए और रश्मि कुकरेती और
0: मुझे श्रुतिपुरी को दीजिए अनुमति,
1: और हम कहते हैं आपसे नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in the NEETA paper leaks. Mr. Modi also asserted that protecting students' future remains the top priority of the government. In a social media post, Prime Minister Modi said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. PM Modi's statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. Mr. Modi said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. The Prime Minister added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, urged the opposition to cooperate for the smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition.
2: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: Despite the appeal by Mr. Rijiju, the opposition members continued with sloganeering and trooped into the well. As the pandemonium continued, Presiding Officer Dilip Saikia adjourned the House till 2 p.m.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। हमारी घड़ी में समय हुआ है दिन के 1:10 और आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसे आप सभी जानते हैं, भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर जी का जिक्र होता है तो एक ऐसी फिल्म का ख्याल सबके मन में आता है जिसमें समाज, इंसानियत, देश प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी 1960 की क्लासिक फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, राधु कर्माकर द्वारा निर्देशित, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों और शंकर जयकिशन के कालजयी संगीत से सजी इस फिल्म की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगले आधे घंटे तक हम जानेंगे डाकों के हृदय परिवर्तन और सीधे साधे राजू की ये अमर दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजू के इस चुलबुले और मासूम अंदाज के साथ।

बहुत ही खूबसूरत गीत। श्रोताओं, मुकेश जी की आवाज़ और राज कपूर जी की मासूमियत, ये जोड़ी हमेशा कमाल करती थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू से। राजू एक अनाथ, बेहद भोला भाला और नेक दिल इंसान, जो डफली बजाकर, गाना गाकर अपना पेट पालता है। एक दिन राजू एक घायल शख्स को तड़पते हुए देखता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान की उसने मदद की है वो चंबल का एक खूंखार डाकू सरदार है। डाकू राजू की मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित होता है, उसे अपने गुरुओं के पास लेकर जाता है। राजू समझता है कि ये रॉबिन हुड की तरह गरीबों की मदद करने वाले भले लोग हैं। इस बीच उसकी मुलाकात होती है सरदार की बेटी कमली से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। कमली यानी अभिनेत्री पद्मिनी के अद्भुत नृत्य और अदाकारी ने इस फिल्म में जान भूख दी। जब राजू डाकुओं के ठिकाने पर रहने लगता है तो कमली और उसके बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन राजू अभी भी इस कड़वे सच से अनजान था कि ये लोग बंदूक के दम पर निर्दोषों का खून बहाते हैं।

श्रोताओं, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सरदार की मौत के बाद राका यानी प्राण डाकुओं का नया सरदार बनता है। राका एक क्रूर और हिंसक डाकू है। एक शादी के दौरान जब डाकू पूरे गांव में कत्लेआम और लूटपाट मचाते हैं तो राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये दया नहीं बल्कि नग्न हिंसा है। राजू का दिल टूट जाता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राजू देखता है कि पुलिस भी डाकुओं को सुधारने की बजाय उन्हें एनकाउंटर में ख़त्म कर देना चाहती है। तब राजू के मन में सवाल उठता है कि अगर अपराध को ख़त्म करना है तो अपराधी को मारना हल है।

या उसके अंदर पनप रहे पाप को मारना। राजू फैसला करता है कि वो डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मनाएगा।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, होठों पे सच्चाई रहती है, ये केवल एक गाना नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। ये फिल्म महात्मा गांधी की उस विचारधारा को दर्शाती है जिसमें कहा गया था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजू, जब डाकू

0: लोगों के बच्चों और महिलाओं को देखता है तो वो उन्हें ये सही रास्ता दिखाने के लिए तड़प उठता है। वो डाकुओं को समझाता है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है।
1: कोटों से सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: कोटों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

अब लौट चलें। ये गाना सिर्फ राजू का बुलावा नहीं था, बल्कि भटक चुके लोगों के लिए सही रास्ते पर वापस आने का एक संदेश था। श्रोताओं, अंत में राजू की

कारी और मुकेश जी का हम ये कहें कि उनकी रूहानी आवाज़, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक अमर कृति बनाया। आज भी जब देश में शांति और सद्भाव की बात होती है तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारी सादगी और सच्चाई में है। उम्मीद है आपको जिस देश में गंगा बहती है इसका ये संगीतमय सफ़र पसंद आया होगा। मुझे यानी अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, हम आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सज़ा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज़ फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी का बयान नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी ज़रूरी इकदाम के लिए मुतल्लिका हुक्काम और अहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वज़ीर आज़म के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये फैसला उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और ये फैसला एक संगे मील साबित होगा। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से तआवुन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस ज़रूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो इस बात का फैसला करे कि बहस का आगाज कब होना है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्यवाही पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुलिस ने वाजे किया कि ये झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोचेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरिया मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डैन के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में

के वाकये की पूछताछ के लिए आईजीपी की जेरे निगरानी एक आला सतह की 4 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आज़ाद, खुले, सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहरे हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदामात, पायरेसी, सामान और मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तिजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाई सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रायजनी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा, उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर यह इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फ़रोग देने की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज़्यादा रसाई फराहम करेगा। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज़ हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगोहाइन CWG 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाई सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा कि मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और

0: अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करे।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
3: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करें।

0: वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया की राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जिंदगी अगर मुस्कुराने का नाम है तो हिंदी सिनेमा में उस मुस्कान को सबसे खूबसूरत अंदाज देने वाले में एक नाम हमेशा याद किया जाएगा और वो नाम है महमूद का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। कार्यक्रम के साथ मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को जिसने अपने अभिनय, हास्य, नृत्य और बेहतरीन अदाओं से लाखों दिलों में जगह बनाई। आज बात महमूद

29 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद के पिता मुमताज अली मशहूर डांसर और अभिनेता थे, लेकिन परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। महमूद ने टैक्सी चलाने से लेकर पोल्ट्री फार्म में काम करने तक कई छोटे बड़े काम किए। फिल्मों में शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडियन भी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा हो सकता है। फिल्म पड़ोसन में महमूद ने दक्षिण भारतीय संगीत शिक्षक का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय लहजे और हाव भाव पर खूब मेहनत की। यही वजह है कि आज भी ये किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार हास्य पात्रों में गिना जाता

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब बारी है संदेशों की। हमारे बहुत से श्रोताओं को शिकायत होती है कि मैं उनके मैसेज नहीं लेती हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार समय की कमी के कारण मैसेज नहीं ले पाती हूं, पर आज मैंने देखा कि बहुत सारे श्रोता शिकायत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मैसेज लिया है। ये हैं हमारे साथ एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, पीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना, और ये लिख रहे हैं कि आपसे गुजारिश है कि सभी के संदेश जरूर लेना जो बने होते हैं। ओके, आज के कलाकार में महमूद पर जानकारी अच्छी लग रही है और गाना भी उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो मस्किन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आशा है कि आपकी ये शिकायत भी आज दूर हो गई होगी। हमारे साथ बने हैं साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, साथ में शालीमार

से अशोक कुमार सहगल, और आप हैं बड़ेखेड़ा पंजाब से टिम मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का। और ये मैसेज हमें मिला है चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी का। और ये लिख रहे हैं कि हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति पसंद आ रही है। तो इंद्रभान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, महमूद सिर्फ हंसाते नहीं थे बल्कि वो किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते थे। दक्षिण भारतीय शिक्षक हो, भोला नौकर हो या शरारती दोस्त, हर भूमिका में उनकी अलग छाप दिखाई देती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कई बार दर्शक पुराण मुख्य नायक से ज़्यादा महमूद का इंतज़ार करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महमूद ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को अवसर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई कलाकारों और संगीतकारों को शुरुआती दौर में सहयोग दिया। वे दिल के उतने ही अच्छे इंसान थे जितने बड़े कलाकार।

आपको बता दें कि एक समय में महमूद को मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली।

शादी और पिता बनने के बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने दो बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। पहला ब्रेक उन्हें मिला 1958 की फिल्म परवरिश में। गुमनाम फिल्म में उन्होंने दक्षिण भारतीय रसोई का कालजयी किरदार अदा किया। इसके बाद फिल्में आईं प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, जिद्दी, बॉम्बे टू गोवा, नीला आकाश, नीलकमल, पत्थर के सनम और अनोखी अदा। बतौर निर्देशक उनकी सस्पेंस कॉमेडी थी भूत बंगला। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करते हुए उन्होंने शाहरुख खान को लेकर वर्ष 1996 में आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का बनाई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही।

आईएस जौहर के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई और उन्होंने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग नाम से फिल्में बनाई। उन्होंने 1963 में दिल तेरा दीवाना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और प्यार किए जा के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जीता। इसके अलावा फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन 1967

की फिल्म लव इन टोक्यो में वे नामित हुए। 1960 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म रही हो जिसमें उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए आकर्षण न बनी हो। उनकी खासियत ये थी कि वे बिना फुहरता के साथ साफ सुथरा हास्य प्रस्तुत करते थे जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता था।

23 जुलाई 2004 को अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और मुस्कान आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। उन्होंने साबित किया कि एक कॉमेडियन केवल हंसाने वाला कलाकार नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा भी हो सकती है। दोस्तों, महमूद का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर चेहरे पर मुस्कान और दिल में हौसला हो, तो मंजिल ज़रूर मिलती है।

ए 16 साल तंदान है तेरे ख्याल तंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

0: इसी मुस्कुराहट के साथ अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: तुम्हें किधर को जाता ही तंदा ना क्यों पास

ताले ताले धुमी ताले ताले ताले धुमी ताले ताले आंधी ताले धुमी ताले ताले के नंदी ताले नाचे ताले धुमी ताले नाचे। एक ही कलाकार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महमूद पर कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गोल्डन इरा के कुछ मीठे सुरीले गीत। कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मेलोडियस गानों के पीछे की घटना का जिक्र करेंगे कि कैसे वो गीत बना। तो पहले बात इस गीत की।

आपको यकीन नहीं होगा कि इस गीत की रचना एक छोटे से ढाबे पर हुई थी। शंकर, जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जब भी खंडाला जाते थे तो वो रास्ते में एक ढाबे पर रुका करते थे। वहाँ चाय नाश्ते के दौर चलते और वहीं पर एक काम करने वाले लड़के का नाम रमैया था। वो तेलुगु भाषी था। शंकर हैदराबाद रह चुके थे और तेलुगु समझते थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, रमैया वस्ता वैया, जिसका मतलब था रमैया इधर कब आओगे। ये दो शब्द शैलेंद्र को इतने पसंद आए कि वो ये बार बार गुनगुनाने लगे। तभी हसरत मुस्कुराने लगे और बोले, बस इतना ही काफ़ी है। शैलेंद्र ने तुरंत अपनी अगली कड़ी जोड़ दी, मैंने दिल तुझको दिया। मुंबई लौटते ही शैलेंद्र ने ये गीत पूरा किया और राजकुमार राज कपूर को सुनाया। गीत

दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि किशोरदा ने सिर्फ अपनी आवाज़ से ही नहीं बल्कि एक साइकिल की घंटी से भी एक गाना सुपरहिट बना दिया था। और ये फिल्म थी पलकों की छाँव में, जिसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना थे। लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन किशोरदा ने एक कमाल कर दिया। वो साइकिल की एक पुरानी घंटी बजाते हुए आए। सबने हंसकर पूछा, दादा ये किस लिए लाए? तो किशोरदा मुस्कुराए और बोले, पोस्टमैन का गाना गाने वाला हूँ तो फील भी वैसी ही आनी चाहिए ना। इसके बाद उन्होंने उसी अंदाज में गीत को रिकॉर्ड किया। गीत के बोल लिखे थे गुलजार साहिब ने और संगीत दिया था लक्ष्मी प्यारे ने। और अपनी जादुई आवाज़ से हमें

और अब बात करते हैं 1963 की फिल्म हमराही की, जिसमें एक गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड करने की योजना थी, लेकिन लता जी के पास समय की कमी थी, इसलिए गाने का डमी वर्जन मुबारक बेगम से रिकॉर्ड करवाया गया ताकि बाद में लता जी की आवाज़ में डब किया जा सके। लेकिन जब रिकॉर्डिंग का समय आया तब भी लता जी मौजूद नहीं थी। तब मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी से कहा कि इस गायिका की आवाज़ नर्म और दिल को छू लेने वाली है। फिर क्या था, गाने को मुबारक बेगम की आवाज़ में ही रहने दिया गया और तैयार हुआ ये गीत मुबारक बेगम की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेट्रो, माफ कीजिएगा आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसके गीत गाने थे रफ़ी साहब को लेकिन गाया किशोर कुमार ने। ये फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जिसके हीरो थे किशोर कुमार। हुआ ये कि रिकॉर्डिंग के समय अचानक ये गीत किशोर दा गुनगुनाने लगे और गीत गाते समय जो दर्द अपनापन छलका तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तुरंत फैसला किया कि अब ये गीत किशोर खुद गाएंगे। और सच ये है कि ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है और हमेशा याद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बात करते हैं उस समय की जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। 60 के दशक में दो महान गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ गाना ना गाने की जिद कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि 4 साल की लंबी खामोशी उनके बीच रही। रफ़ी साहब ने आशा और सुमन कल्याणपुर के साथ अनेक हिट गाने दिए। लता मंगेशकर को लगा कि कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर हुआ ये कि फिल्म ज्वेल थीफ के संगीतकार SD वर्मन ने तय किया कि उनके गीत रफ़ी और लता ही गाएंगे। उन्होंने लता जी को काफ़ी आत्मीयता से मनाया कि उनके ईगो के कारण नए लोगों को लेना पड़ रहा है और उनके लिए ये ठीक नहीं। फिर लता जी को भी एहसास हुआ, इस तरह उन्होंने रफ़ी साहब के साथ फिर से गीत गाया और वो गीत था ज्वेल थीफ का।

क्या आप जानते हैं कि एक गाना जिसे एस डी बर्मन रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार ने साफ कह दिया कि ये गीत वो खुद गाएंगे। ऐसा क्या था उस गीत में? ये किस्सा है 1971 में आई फिल्म कैमलर का। एस डी बर्मन का मानना था कि ये गीत राग भैरवी पर आधारित है, तो रफ़ी साहब पर यह आवाज़ सूट करेगी क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़ कमाल की है। लेकिन किशोर कुमार को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद गाने की जिद पकड़ ली और इस गाने के लिए उन्होंने दिन रात 3 दिनों तक अभ्यास किया और वाकई ये गीत आज भी किशोर कुमार की आवाज़ में श्रोताओं के दिल तक पहुँच

क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड का एक गीत सिर्फ चार शब्दों से बना था? इन चार शब्दों ने गीतकार की 10 दिनों की खामोशी को ख़त्म कर दिया। ये बात है 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की। सब तैयार था लेकिन गीतकार आनंद बख्शी पिछले कई दिनों से गाने की लाइन नहीं लिख पा रहे थे। तभी स्टूडियो में जे ओम प्रकाश आए और जाते जाते बस उन्होंने ये कहा, अच्छा तो अब हम चलते हैं। बिना सर उठाए आनंद बख्शी ने बस यही कहा, फिर कब मिलोगे? तो उन्होंने कहा, जब तुम कहोगे। और बस यही चार शब्द फिल्म की धड़कन बन गए। कुछ ही देर में कागज़ पर उतर चुका था वो अमर गीत, जिसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और ये

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

जो हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर मौसूम है, जिसने सबसे पहले मकनातीसी लहरों का तजर्बा किया था। बहरहाल दुनिया में रेडियो की ईजाद हुई और ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो नशरियात किसी भी मास मीडिया के जरिए रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस जगह यानी स्टूडियो से मुतअद्दिद जगह आवाज़ को तकसीम करना कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में बाकायदा नशरियात की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को बम्बई, जिसे मुंबई कहा जाता है, निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ज़रिए हुआ।

0: तो नौजवान इसके प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों को उजागर कर अपनी शख्सियत संवार और निखार सकते हैं। ये सच है कि रेडियो नौजवानों की शख्सियत में फ़रोग और किरदार साजी में बहुत मुआविन साबित होता है। नौजवान रेडियो पर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों, मसलन अदबी, सकाफती, मालूमाती, मुकाबला जाती, ड्रामा, मुबाइस वगैरह सुनते हैं तो उनके अंदर एक जोश पैदा होता है, एक जज्बा बेदार होता है कि वो भी इन प्रोग्रामों का हिस्सा बने, कोई तख्लीकी काम अंजाम दें और अपनी शख्सियत को कामयाब बनाने में सरगर्दा रहें। तो नौजवान रेडियो तो सुनते ही हैं, साथ ही वो ये भी सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं कि अनाउंसर की आवाज़ कैसी है, उसका प्रोग्राम पेश करने का तरीका कैसा है। ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक इंसान की शख्सियत साजी के लिए बहुत सारी बातें हैं जैसा कि मैंने पहले अभी ज़िक्र किया था। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी ख्वाहिश को किस तरह तकमील तक पहुंचाए। अब जैसे रेडियो के अनाउंसर्स होते हैं तो नौजवानों में ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी उस जैसा अनाउंसर बनूं। अब उस जैसा अनाउंसर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप उसी अनाउंसर से पूछें कि उसने किस तरह अपनी आवाज़ को एक खूबसूरत आवाज़ बनाया, उसने किस तरह ज़ुबान पर कंट्रोल हासिल किया। देखिए, सिर्फ अच्छी आवाज़ का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस ज़बान में आप बात कर रहे हैं उस ज़बान पर भी आपको पूरा उबूर हासिल होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरत है ट्रेनिंग की, मेहनत की। तो जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि शख्सियत साजी के लिए या किरदार साजी के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ख्यालात, एहसास व जज्बात, बर्ताव, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में नहीं मानी जाती हैं, यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। तो शख्सियत के फ़रोग के लिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, खुले दिमाग की ज़रूरत है, यानी आपके जहन में बिल्कुल खुलापन होना चाहिए। जब भी आप जिस बात के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपका दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए। नर्म खूब बहुत नरमी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। ईमानदारी और वफादारी ये बहुत ज़रूरी है, हर काम के लिए ईमानदारी और वफादारी का होना बेहद अहम होता है। नए नए लोगों से आप राब्ता कायम करें, आप ताल्लुकात बढ़ाएं, उनकी सुनें, अपनी भी सुनाएं, यानी एक अच्छे सामे होना भी बहुत ज़रूरी है। सब्र तहम्मुल और मुश्किलात का सामना खंदा पेशानी से करें, ये तमाम चीज़ें एक बेहतरीन शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका ध्यान रखिए, इन पर गौर कीजिए।
1: नौजवानों की किरदार साजी में आकाशवाणी का रोल। अभी आप ये तकरीर सुन रहे थे, पेश कर रहे थे जनाब एस एम शफीक। सामईन, आकाशवाणी की नशरियात सिर्फ तफरीह का ज़रिया ही नहीं है बल्कि ये आवाम को जोड़ने और समाजी तरक्की का अहम स्तून भी है। आवाम में बेदारी लाने और उनको तालीम फराहम करने का ज़रिया भी। सामईन, खबरों के ज़रिए दुनिया का अहवाल, मौसम का हाल और सरकारी पॉलिसियाँ आवाम तक पहुँचाने में आकाशवाणी की नशरियात एक अहम रोल अदा करती रही हैं। इसके साथ साथ ज़रात, सेहत और तालीम को दूर दराज और देही इलाकों में मालूमात फराहम करने में आकाशवाणी की नशरियात ने अहम काम अंजाम दिया है।

印度特里广播电台，中印度时间5:15到6:45和16:17:30中，向亚洲播送普通话节目，播长时137。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
2: मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ।
1: रेणु, आज तो खेलों में बहुत कुछ है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत औपचारिक होनी है, लेकिन खेल शुरू हो गए हैं और भारत का एक मेडल भी पक्का हो गया है। क्रिकेट भी है, और क्या कुछ खास है हमारे पास?
2: जी हाँ धर्मेंद्र, आज हम अपने श्रोताओं को ले जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में, साथ ही साथ बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की जो T20 श्रृंखला है उसका पहला मुकाबला, साथ ही बात करेंगे चाइना ओपन बैडमिंटन की, ISSF राइफल पिस्टल शॉटगन से भी कुछ खास खबरें हमारे पास हैं, यूथ हॉकी की भी बात करेंगे और जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कनाडा के ओंटारियो में चल रही है उस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर की एक रिपोर्ट अपने श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे और बात करेंगे UTT सीजन 7 पर, और अगर समय ने हमें इजाजत दी तो शायद कुछ और खेल खबरें भी हम ले पाए।
1: जी तो शुरुआत हम कहां से करने जा रहे हैं?
2: तो ऐसा करते हैं धर्मेंद्र, शुरुआत हम सबसे पहले अभी जो हमारा ताजा मैच चल रहा है इंडिया जिम्बाब्वे का उसी से कर लेते हैं। तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्क्वाड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में ड्रॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी आज वापसी कर रहे हैं, और अगर भारत की टीम की बात करें तो उसमें है वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव। वहीं जिम्बाब्वे की कप्तानी जो कर रहे हैं वो है सिकंदर रजा। और मैच के ताजा हाल के लिए धर्मेंद्र, आप श्रोताओं को क्या जानकारी दे रहे हैं?
1: ताजा जानकारी ये है कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है जैसा आपने बताया, और भारत ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया है अभी तक में। कुल मिलाकर 9 अगर हम कहें तो एक्स्ट्राज के रन आए हैं, ओवर्स हुए हैं 10.5, और इन 10.5 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए हैं जिम्बाब्वे ने सिर्फ 55 रन पर। और इन सफल गेंदबाजों में भारत की तरफ से मयंक यादव हैं जिन्होंने 2 विकेट अब तक लिए हैं, इसके अलावा प्रिंस यादव ने 1 विकेट लिया है और शिवम दुबे को भी 1 सफलता मिली है। 2 नॉट आउट बल्लेबाज जो इस समय मैदान पर हैं, रियान बुरी और वेस्ले मैदवेरे, ये मैदान पर हैं। रियान बर्ल हैं बल्कि जो नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, इस समय साथ दे रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी का, 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने कुल 25 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है, और उधर

0: मैदवेरे 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, कोई चौका और छक्का अभी तक उनकी पारी में नहीं है।
1: बिल्कुल, और मैच की ताज़ा जानकारी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन अभी हम किसी दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या लेकर आ रहे हैं धर्मेंद्र आप?
0: अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का आज से औपचारिक आगाज हो रहा है, खेलों की शुरुआत भी हो चुकी है और भारत के लिए एक मेडल भी पक्का हो गया। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: The Commonwealth Games.
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की रणभेरी आज बजने वाली है, लेकिन उससे पहले ही भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है। मुक्केबाजी में भारत के लिए एक पदक पक्का हो गया है। लवलीना बोरगोहेन बाई मिलने के कारण अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और उनका एक पदक पक्का हो गया है। वैसे हम बात करें तो लॉन बॉल्स के शुरुआती मुकाबलों के साथ खेलों का आज से आगाज हो गया है, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े खेल आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स की विधिवत शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी के साथ ग्लासगो के प्रसिद्ध ओवो हाइड्रो एरिना में होगी। ये पहली बार होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह किसी इंडोर एरिना में आयोजित की जाएगी। इस समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां, बड़े विजुअल इफेक्ट्स, सभी 74 देशों के लिए अलग अलग डिजाइन किए गए किंग्स बैटन की एंट्री और संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें मशहूर ब्रिटिश सिंगर टॉम वॉकर परफॉर्म करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर फिनी है, जिसे स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न से प्रेरित होकर बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मीराबाई चानू राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेंगी, जबकि लवलीना बोरगोहेन किंग्स बैटन लेकर दल का नेतृत्व करेंगी। इसके बाद कल से पदकों की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कशमकश शुरू होगी। 74 देशों के 3000 से अधिक खिलाड़ी 2 अगस्त तक चलने वाले 11 दिनों के इस खेल महाकुंभ में चुनौती पेश करने जा रहे हैं। इस बार 10 खेलों की 215 स्पर्धा 7 स्टेडियम में होगी। कुल 215 गोल्ड सहित 1168 मेडल दौ पर होंगे। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स में मेजबान शहर की पहचान, इतिहास और समावेशिता की झलक देखेगी। पुरस्कार विजेता आर्टिस्ट और डिजाइनर मिलित्सा मिलेनकोवा ने मेडल डिजाइन किए हैं। ये मेडल ग्लासगो के लैंडमार्क्स, कोट ऑफ आर्म्स, औद्योगिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में माइल की वापसी होने जा रही है। ये इवेंट आखिरी बार 1966 में हुआ था। इसमें 1500 मीटर की जगह 1 मील यानी 1.609 किलोमीटर की मेंस वीमेंस रेस होगी। 2026 में 6 खेलों में पैरा स्पोर्ट्स को पूरी तरह शामिल किया गया है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट प्रोग्राम है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार मेडल्स में ब्रेल और टेक्सटाइल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। इन पदकों को जीतने और ग्लासगो में आसमान की ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराने के लिए भारत की ओर से 123 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेने जा रहा है, जो एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स, लॉन बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और पैरा कंपटीशन में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल से ढेर सारी उम्मीदें जताई हैं और शुभकामनाएं दी हैं।
3: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। स्पोर्ट्स का 75 इयर्स का हमारा इतिहास शायद मेडल टैली के हिसाब से बेस्ट माने ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देश में यूथ में, क्योंकि 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये देश के यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जज्बे भी कोई कमी नहीं, ना कमी थी ना आज है ना भविष्य में रहेगी। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। दोस्तों, मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
0: आइए आपको बताते हैं कि कल भारत के एथलीट्स कब कब एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। 24 जुलाई को भारतीय दल की सबसे अधिक निगाहें लॉन बॉल्स, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स पर होंगी, क्योंकि इसी खेल ने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास का एक यादगार अध्याय लिखा था। भारतीय महिला टीम ने तब लॉन बॉल्स में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल कर इस खेल में भारत की बढ़ती ताकत का परिचय दिया था। अब ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी उस सफलता को दोहराने और पदक अभियान की शानदार शुरुआत करने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। लॉन बॉल्स के अलावा भारतीय खिलाड़ी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, मुक्केबाजी और पैरा पावरलिफ्टिंग में भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, क्योंकि शुरुआती मुकाबले

ही आगे के अभियान की दिशा तय कर सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार दिन के 1 बजे कल बॉल्स एवं पैराबॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह महिला डबल्स के सेक्शनल प्ले में उतरेंगी। इसी समय बॉल्स एवं पैराबॉल्स में पुतुल सोनोवाल पुरुष सिंगल्स के सेक्शनल प्ले में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:30 बजे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, योगेश्वर सिंह पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिक

0: मास्टर स्ट्रोक हीट्स में दावेदारी रखेंगे। कल 3:30 बजे मुक्केबाजी में प्रीति पवार महिला 54 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16, जैस्मीन लेम्बोरिया महिला 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32, सुमित कुंडू पुरुष 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32, जादूमणि सिंह पुरुष 55 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में रिंग में होंगे। शाम 5:30 बजे पैरा पावर लिफ्टिंग में अशोक मलिक पुरुष लाइटवेट, परमजीत कुमार पुरुष लाइटवेट, सुमन देवी और जसप्रीत कौर महिला लाइटवेट वर्ग में भार उठाएंगी। मुक्केबाज प्रिया घंगास 10:30 बजे महिला 60 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में हिस्सा लेंगी। इसी समय पैरा पावर लिफ्टर कस्तूरी राजामणि महिला हैवीवेट, सुधीर और झंडू कुमार पुरुष हैवीवेट में हिस्सा लेंगे। सच कहा जाए तो कल से ही पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने उम्मीद जताई है कि भारत के खिलाड़ी इस बार भी परचम लहराएंगे।
1: ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस बाई बिकॉज द गवर्नमेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज विच प्लेयर्स वांट्स सो एक्सपोजर इज द मस्ट दे आर गेटिंग फॉर एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑल्सो फॉर IOA इज ऑल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करेंगे।
0: ये तो हुई वर्तमान की बात, अब थोड़ा इन खेलों का इतिहास और भारत की उपलब्धियों को भी जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी, तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। इन खेलों में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देश हिस्सा लेते हैं। पहले एडिशन में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े 11 देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग जैसे खेल शामिल थे। 1930 से 1950 तक इस टूर्नामेंट को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। 1970 में ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स बना और 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन हर 4 साल में होता है। इसका मकसद कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों को बड़े इंटरनेशनल मंच पर कंपटीशन का अवसर देना है। भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था। लंदन 1934 गेम्स में भारत की ओर से 6 एथलीट उतरे थे। भारतीय दल ने 10 ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया। इसी एडिशन में भारत ने अपना पहला मेडल जीता था। पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल हासिल किया था। यानी भारत का पहला कॉमनवेल्थ पदक उस समय आया जब देश का अपना तिरंगा भी आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। भारत को पहला गोल्ड आजादी के बाद 1958 में कार्डिफ में धावक मिल्खा सिंह ने दिलाया। उन्होंने 440 यार्ड दौड़ जीतकर इतिहास रच दिया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स की एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इस जीत के बाद उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। उसी संस्करण में पहलवान लीला राम ने भी स्वर्ण पदक जीता। 1934 में डेब्यू के बाद से भारत ने 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर बाकी सभी एडिशन में हिस्सा लिया है और अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 564 मेडल जीते हैं। इनमें 203 गोल्ड, 189 सिल्वर और 172 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने एक बार 2010 में इन खेलों की मेजबानी की थी। नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। 71 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के करीब 6000 खिलाड़ी 70 खेलों की 272 स्पर्धाओं में उस खेल में उतरे थे। तब मेजबान भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य समेत 101 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा। आज भी ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हम आपको ये भी बता दें कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स एक बार फिर भारत लौटेंगे, मेजबानी अहमदाबाद करेगा। 2030 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसे खास माना जा रहा है। तभी तो भारत के मिशन प्रमुख, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल कह रहे हैं कि ग्लासगो में इस बार खेलों से इतर भी भारत के लिए बहुत कुछ होगा।
2: हम लोग नेक्स्ट होस्ट हैं, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है। वहाँ पे हम लोगों को बेटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
0: वैसे कॉमनवेल्थ की कहानी शुरू होती है 1891 में जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। दुनिया की करीब 1/4 आबादी

और विशाल भूभाग ब्रिटेन के शासन में था। तब एक ब्रिटिश पादरी जॉन एस्टली कूपर ने एक ऐसा सपना देखा जिसने बाद में दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्य की ताकत सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों से भी बढ़ती है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक मैदान पर उतरेंगे तो आपसी भरोसा और भाईचारा मजबूत होगा। अपनी सोच को उन्होंने नाम दिया पैन ब्रिटेनिक फेस्टिवल। लेकिन विचार देना आसान था, उसे सच करना बेहद मुश्किल। करीब 20 साल तक ये सपना कागजों में ही पड़ा रहा। फिर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। इसी मौके पर लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर आयोजित किया गया। तब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के खिलाड़ी पहली बार एक ही आयोजन में उतरे। ये आधिकारिक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थे लेकिन इतिहासकार इसे कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली झलक मानते हैं। यहीं लोगों को एहसास हुआ कि ऐसा आयोजन सफल हो सकता है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खेल प्रशासक मिले। यही फैसला हुआ कि ओलंपिक से अलग हर 4 साल में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के लिए अपना एक खेल आयोजन होगा। यही वह फैसला था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स को जन्म दिया। हालांकि जब 16 अगस्त 1930 में कनाडा के छोटे से शहर हैमिल्टन में पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स शुरू होने वाले थे तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। उस समय हवाई यात्रा आम नहीं थी। ज्यादातर खिलाड़ी

0: से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। बेहरवाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह तारड़ और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में ये पायल बहन MLB रोड ग्वालियर से भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है आदर्श नगर मलौट पंजाब से, भेजने वाले भाई हैं राज शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमें भेजी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है दादा बाबू रोड झारखंड से, भेजने वाले भाई हैं मोहम्मद यासीन अनजान और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, भेजने वाले हैं सैयद मसरूर और परिवार के सभी सदस्य।
0: बिल्कुल, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें फरमाइश भेज रहे हैं तिलकराज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। GTB मार्केट एमनगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। और सुखपाल सिंह को ही सुनना चाहा है गांधीनगर गुजरात से, भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलौट से SMS भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। बाबा कुटीर रायगढ़ से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं शिव कुमार चौहान और इनका पूरा परिवार।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश भेजी है सत्येंद्र कुमार जनसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से भी हमें फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छिपा और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है जनकपुरी सहारनपुर से और भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है PS नाहवकर और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। संदीप मक्कड़ ज्योति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने यह फरमाइश हमें भेजी है पिंगावाला चौक गौराया जलंधर से।
0: ये फरमाइश हमारे पास में आई है मुंगी पैठन महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं बाबा साहेब कंगनकर और उनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से भी हमारे पास में फरमाइश आई, भेजने वाले हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से भी फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार। गाँव चौधरीवास हरियाणा से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से भी फरमाइश भेज रहे हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है जमानिया गाजीपुर से, भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। गाँव खोकरावली से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं पायल बहन सभी की फरमाइश पर सुखपाल सिंह और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी।

0: अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी और किस्सा था नरसी का भात। और भात ऐसा कि भाई जो आज तक भी भात में नाम हुआ कि भाई नरसी जैसा भात ना तो किसी ने भरा और ना कोई भरेगा।
1: भरेगा बिल्कुल
0: तो आइए, हमारे जो अगले कलाकार हैं उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं महेंद्र शर्मा, इनके लिए भी SMS ये आया है हमारे पास में। कुलम रोड, हरगोविंद नगर, नवांशहर, पंजाब से भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, इनका पूरा परिवार। और बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है जटवाड़ा गाजियाबाद से, भेजने वाले भाई हैं शीशपाल अकेला। और ये फरमाइश हमें भेजी है धनौरी तेलीवाला से, भेजने वाले भाई हैं निसार सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। रावर करनाल से हमें फरमाइश भेजी है ज्ञान भूषण शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से हमें फरमाइश भेजी है राष्ट्रपाल गजबिये और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: ये फरमाइश हमारे पास में है जिला नांदेड़ यताला, महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं शंकरलाल जायसवाल, उनका पूरा परिवार। भटिंडा रोड, मंडी डबवाली से फरमाइश भेज रहे हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। गांव 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार। गांव लहरौड़ा, जिला बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार। करावल नगर, दिल्ली से भी हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार।
0: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है विक्रम कडवासरा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जलालपुर जिला सहारनपुर से हमें फरमाइश भेजी है श्रवण कुमार प्रजापति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश लोहगढ़ ठुकरावाला से हमें फरमाइश भेजी

0: है स्वर्ण सिंगल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: सूरतगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। और तो सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं महेंद्र शर्मा की आवाज़ में ये राग।

0: पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे महेंद्र शर्मा की आवाज़ में ये रागनियों की कथा सत्यवान सावित्री का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1,000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है।

0: मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: अतुल भाई
1: जी पायल बहन
0: भाई, कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने सभी किसान बहन भाइयों का मनोरंजन तो कराते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें, काम की बातें भी जो उनके काम आ सकती है, जिससे कि वो अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, ऐसी भी जानकारी हम समय समय पर अपने किसान भाई बहनों को देते रहते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए, हमारे कृषिगत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए विशेष जानकारी, उनकी फसल से संबंधित हो, चाहे उनके पशुपालन से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, जानकारी समय समय पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुँचाते रहते हैं। ऐसी ही आज एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, मशरूम उत्पादन की संरक्षित खेती, संरक्षित एवं आधुनिक तकनीकी।
0: बिल्कुल, क्यों
1: और
0: ना ये बातचीत अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई जाए।
1: बिल्कुल, और इसकी जानकारी दे रहे हैं पवन कुमार, प्रगतिशील किसान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो पहल भी लेते हैं ये जानकारी।
2: भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में कभी कभी प्रगतिशील किसानों को भी बुलाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो, चाहे बागवानी की बात हो, और चाहे फसल उत्पादन की। और अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जियों में भी बहुत सी सब्जियां हैं, कोई तो फूलगोभी उगाता है तो कोई दूसरे तरीके की सब्जियां उगाता है, लेकिन अगर हम बात करें एक विशेष जो पौष्टिक सब्जी है जिसको कहते हैं कि मशरूम, और कुछ लोग इसको कुंभ के नाम से भी जानते हैं, तो आज हमारे साथ हैं पवन कुमार जी जो कि एक मशरूम उत्पादक हैं, और इनसे जानेंगे कि मशरूम उत्पादन की संरक्षित और आधुनिक तकनीक क्या है। पवन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते सभी को जी। मेरा
2: सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि जैसे मशरूम, इसको खुम्ब भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं कि कई तो जंगली मशरूम होते हैं और जो हमारे किसान भाई उगाते हैं सब्जी के तौर पर जिन्हें प्रयोग किया जाता है, तो इनमें क्या अंतर है, कौन से उगाए जाते हैं?
3: जो जंगली मशरूम होती है उनमें कुछ खाने के योग्य, सभी मशरूम नहीं है जंगली।
2: हाँ, मतलब खाने योग्य नहीं है।
3: हाँ, सभी नहीं है, है कुछ खाने योग्य
2: जी,
3: मगर वो लोग खा सकते हैं जिनको पहचानो नहीं, तो वो विषैली भी है।
2: और जो उगाते हैं किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से,
3: हाँ, ये एक साइंटिफिक तरीके से, इसका मशरूम एक फंगस है तो वो तैयार किया जाता है लैब में, जो कि हमारे शरीर में उसका कोई भी नुकसान नहीं होता।
2: तो आपने मशरूम का उत्पादन कब से शुरू किया था?
3: मैं 2016 में किया था जी।
2: आज जो मशरूम आपने शुरू किया था, अब उसकी स्थिति क्या है?
3: हमने स्टार्टिंग में छोटे कंट्रोल कंडीशन फार्म से शुरू किया था
2: जी,
3: तो बटन मशरूम से शुरू किया था। अब हम दो तीन तरह के मशरूम उगाते हैं, बटन भी उगाते हैं, ओस्टर भी, क्रिमनी, एक पोर्टोबेलो। उनमें थोड़ा सा प्रोटीन विटामिन एक्स्ट्रा है, और टेस्ट भी अलग है और बनाने का तरीका भी अलग है।
2: जैसे आपने जब शुरू किया तो क्या मशरूम के बारे में पहले से जानकारी आपको थी या आपने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: नहीं, मैंने मेरे नज़दीक KVK उजवा था दिल्ली।

0: में,
1: जी
0: तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मैंने हैक से भी ली, सोलन से भी ली नए रिसर्च के लिए। तो वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने शुरू किया। फिर मैं धीरे धीरे हर साल अपने कंट्रोल कंडीशन के जो हमारे प्लांट है वो बढ़ाता गया।
1: तो आज के कितनी स्थिति है, कितने क्षेत्रफल में आपने लगा रखा है?
0: अभी हमारा जो है इसका क्षेत्रफल, इसमें जी स्टेप बनते हैं,
1: जी
0: और हमारे सारे एसी प्लांट हैं कंट्रोल कंडीशन के, 12 महीने चलते हैं।
1: तो 12 महीने उत्पादन मिलता है।
0: हाँ जी, 12 महीने उत्पादन मिलता है हमारा। अभी 80 टन खाद आता है, तो 80 टन का मतलब होता है कि अगर आप मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक है तो 18 से 22% निकलती है एक बैच में। 80 टन का मतलब हो गया 16,000 किलो एक बैच। हमारा 70 दिन के आसपास हमारा कंपोस्ट अंदर भी और बाहर हो जाता है। एक बैच मतलब 70 दिन के आसपास लग जाते हैं, 60 से 70 दिन।
1: और कंपोस्ट आप क्या खरीदते हैं या बनाते
0: हाँ जी,
1: हैं?
0: मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यहाँ मैं बना नहीं सकता, मेरे को कंपोस्ट बनाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो बाहर से लेता हूँ, मगर फार्मूला हम अपना देते हैं।
1: अच्छा, उनसे अपने तरीके से बनवाते हैं।
0: हाँ जी, उनसे अपने तरीके से बनवाते हैं, और 30-40 फार्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा राजस्थान में भी, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी, उनको भी खाद हम ही दिलवाते हैं।
1: जो आपने कंपोस्ट तैयार कराते हैं उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से बनवाते हैं?
0: हमारा वहाँ भी कंट्रोल कंडीशन से ही बनता है कंपोस्ट।
1: कंपोस्ट भी?
0: हाँ, वो ओपन में नहीं बनता, उसके अंदर जैसे ओपन में बनता है उसमें हमें पोस्चराइज करने के लिए बहुत केमिकल यूज़ करना पड़ता है। हमारा टनल बंकर में बनता है, तो हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, वो प्रोसेस है, तो उसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड ये यूज दवा या कोई यूज़ नहीं होती उसके अंदर। हाई टेम्परेचर से जो हमने पोस्चराइज करना पड़ता है उसी से मशीनों में हो जाता है, टनल बंकर में।
1: जो कंपोस्ट बनते हैं ये केवल मशरूम के लिए?
0: हाँ, मशरूम के लिए ही बनता है जी, वो अलग से ही बनता है, मशरूम का ही बनता है वो। वैसे तो सभी मशरूम का अलग अलग है,
1: जी
0: मगर जो हम 2-3 तरीके की बनाते हैं, जैसे बटन का है, पोर्टोबेलो क्रीमनी, उसमें एक दोनों ये एक ही यूज़ हो जाता है। ओस्टर का जो बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं, बाकी कुछ मशरूम अलग है उनका हम खुद बनाते हैं, उसके लिए टनल बंकर की जरूरत नहीं होती।
1: मान लीजिए आपने कंपोस्ट ले ली
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: उसके बाद उसमें जब स्पॉन मिलाने का वो होता है तो उसको क्या, कौन सी तकनीक अपनाते हैं?
0: हम अपने फार्म पे 2 तरीके से उगाते हैं, एक बेड पे और एक बैग में। तो जैसे बैग में है, बहुत से किसान तो क्या करते हैं कि जहाँ कंपोस्ट बनता है
1: जी
0: उन्हीं को कह देते हैं कि जी हमारा स्पोन इसके अंदर मिक्स करके दे देना, मगर उसमें किसान को कई बार नुकसान हो जाता है। जब कंपोस्ट ट्रेवलिंग करता है
1: तो
0: तो
1: गर्म
0: गर्मियों
1: होता
0: के
1: है।
0: टाइम में उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे उसका स्पोन मरने का डर रहता है। हम ऐसा नहीं करते,
1: जी
0: हमारे साथ कई बार क्या होता है, जैसे कंपोस्ट आया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम उसको बेड में कन्वर्ट करते हैं, बैग में नहीं डालते ना उसके अंदर स्पोन डालते हैं, उसको हम अपने बेड पे डाल देते हैं। और फिर जब उसका टेम्परेचर उसमें हमारा जो एक साइंटिफिक 24-25 डिग्री
1: जी
0: उतना आ जाता है, हमारे एसी उसको ठंडा करते हैं, 1 दिन के अंदर हो जाता है, फिर उसके अंदर हम स्पोनिंग करते हैं, या बैग में भी करना पड़ता है तो बैग को हम ऐसे ही बगैर स्पोनिंग के रखते हैं, जब उसका टेम्परेचर एक ठीक ठाक आ जाता है 24-25 डिग्री तभी उसमें स्पोनिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते।
1: तो ये
0: किसान
1: स्पॉन?
0: ये गलती करते हैं
1: जी
0: कि थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि जी बैग बने बनाए ले लिए, अब वो रास्ते में ट्रेवलिंग में या टेम्परेचर में भीग गया, या कभी लापरवाही हो जाए या हाई टेम्परेचर हो गया, तो उससे किसान का नुकसान होने का डर है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर जब 24-25 डिग्री आ जाए तभी स्पोनिंग करें उसमें।
1: तो जो स्पॉन है वो कहाँ से लेते हैं आप?
0: फोन हमारा जी दिल्ली से भी आता है और सोनीपत से भी आता है, लैब है वहाँ,
1: जी
0: उन लैब से लेते हैं हम।
1: तो अलग अलग किस्मों के अलग अलग होते
0: हाँ,
1: होंगे।
0: वैरायटी अलग अलग है।
1: और जो आपने जिस तरीके से कहा कि हमारा पूरा संरक्षित दशाओं में है, तो उसमें टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करते हैं?
0: हमारे पास कमर्शियल एसी लगे हुए हैं, इसके लगाने के लिए पूरा कोल्ड स्टोर टाइप बनाना पड़ता है, हमारे कोल्ड स्टोर टाइप है सारे, उन्हीं में रैक है, उन्हीं में हमारी कंट्रोल कंडीशन के लिए एसी लगे हुए हैं, कमर्शियल एसी लगते हैं सेंट्रलाइज, वो लगे हुए हैं, तो उसी से टेम्परेचर मेंटेन होता है।
1: अच्छा, कोई भी चीज़ जब हम संरक्षित दशाओं में उत्पादन करते हैं तो उसके लिए उसमें स्वच्छता की बहुत ज़रूरत होती
0: हाँ जी,
1: है, तो वो आप कैसे करते हैं?
0: देखो पहले धारणा क्या थी कि मशरूम सड़ी गली चीज में पैदा होती है,
1: जी
0: अगर हमारे कंपोस्ट में कुछ पार्ट पोस्चराइज ठीक नहीं हुआ या सड़ा गला है, वहाँ मशरूम नहीं आएगी जी, बड़ी शुद्ध जगह में मशरूम पैदा होती है। तो हम अपने प्लांट में जो हमारे कमरे हैं जिनमें हम उगाते हैं उनको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं जी।

0: जब हम उसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं तो उसको कम से कम नहीं तो हम 24 घंटे या 48 घंटे पहले सफाई करके फिर ट्रीट करके उसको बंद कर देते हैं कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या मक्खी मच्छर कोई चीज़ ना हो।
1: और जैसे इसमें, क्योंकि जब आप बिल्कुल उसको बंद रखते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कीटों का तो कोई प्रभाव होने की संभावना रहती ही नहीं है।
0: नहीं, कई बार क्या होता जी, जैसे मौसम में अब जैसे बरसात का है
1: जी
0: तो किसानों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन दिनों में।
1: अच्छा, कीट आ जाते हैं।
0: हाँ जी, उसके लिए अब हमारे कमरे बंद होते हैं,
1: जी
0: इसका एक बनाने का भी तरीका होता है कमरे का।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरा बनाया और उसके आगे पूरा ही खुला है, दरवाज़ा खोला, बाहर से हवा आ रही है या कीट आ रहे हैं, तो बनाने से पहले ये दो तीन चीज़ें देख लें कि कमरे से आगे एक और कमरा बनाए जो आपके बाद में स्टोर या पैकिंग में यूज़ हो जाएगा। तो एंट्री जब भी होगी किसी चीज़ की, पहले उस कमरे में होगी, फिर प्रोडक्शन यूनिट में होगी।
1: मान लीजिए, फिर अगर उसमें कीट आ गए तो
0: हाँ,
1: उनका नियंत्रण कैसे करें?
0: कुछ कीट ऐसे हम पे नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। सावधानी और साफ सुथरा रखना ही बचाव है। ध्यान रखना चाहिए किसानों को कि दवाई वाई ना यूज करके सावधानी बरते।
1: मशरूम
0: खुद
1: में भी कोई बीमारियां वगैरह भी होती हैं?
0: बीमारियां तो जी आ जाती है, बहुत तरह की बीमारी है, उसमें कुछ पीछे से भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो बीज है स्पोन,
1: जी,
0: उसमें भी आ सकती है, कंपोस्ट में भी आ सकती है। कंपोस्ट पोस्चराइज ठीक नहीं हुआ हो, शुद्धिकरण उसका ठीक नहीं गया, उसका एक टेम्परेचर पे ले जाके फिर उसको डाउन करने पे गलती कर देता है कई बार किसान, तो उसमें किटोनिया उटोनिया टाइप कई तरह की बीमारियाँ, तो उसमें मशरूम नहीं आती। कुछ
1: अच्छा,
0: बीमारी तो ऐसी है, स्टार्टिंग में जब हम कंपोस्ट में स्पोन मिलाते हैं, स्पोन रन होते ही थोड़े दिन बाद ही बीमारी आ जाएगी और कोई मशरूम पैदा नहीं होगी।
1: तो मान लीजिए मशरूम ऐसी फसल है कि जिस तरीके से लोग गेहूं धान काटते हैं, इकट्ठा तैयार हो जाता है, लेकिन मशरूम में ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: धीरे धीरे आता है। तो इसकी जो कटाई है, ग्रेडिंग है, इसमें आप क्या सावधानी रखते हैं?
0: अगर आप ग्रेडिंग का और क्वालिटी का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा।
1: जी
0: थोड़ी सी सावधानी और अच्छा रेट। देखो, आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में,
1: जी
0: जो आपको सब्जी में कोई भी पैकिंग में है या खुली है जो सबसे अच्छी लगती है, ग्राहक को सबसे पहले उसी को उठाता है।
1: बिल्कुल, साफ सुथरे हो,
0: हाँ, तो ये चीज़ें तो आपको
1: चमकदार
0: ध्यान
1: हो।
0: रखनी चाहिए उस अपने फार्म पे ही। जब आप मार्केट पे जाओ उससे पहले उसकी ग्रेडिंग करवा दो, तो ए बी ग्रेड भी दोनों बिक जाती है, ये नहीं है बिकती नहीं है, बिक जाती है। तो ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कस्टमर का भी ध्यान रखना चाहिए,
1: जी
0: जो हमें पैसे दे रहा है
1: बिल्कुल
0: उसके भी
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: और क्योंकि देखो, उत्पादन तो सभी कर लेते
0: हाँ
1: हैं
0: जी,
1: और मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत से उत्पादन कर लूं, लेकिन असली बात आती है कि उसकी मार्केटिंग की, क्योंकि जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक उसे फायदा नहीं होगा। तो आप मार्केटिंग कैसे करते?
0: देखो, मार्केटिंग की तो सबके पास अपने अपने स्रोत है जी। हमारे पास तो ज़्यादातर हमारी खुद सप्लाई है। हम होलसेल में, जैसे मंडी है
1: जी
0: आढ़ती जहाँ बैठते हैं, वहाँ हमारी बहुत कम जाती है। वहाँ हमारी तब जाती है जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो, नहीं तो
1: अच्छा,
0: हमारे पास, मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मार्केट तो किसानों के लिए सबके लिए है, मगर वहाँ लेने वाला देखेगा ना जी कि किसकी क्या क्वालिटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो और वो क्या क्वालिटी ले रहे हैं। हमारी तो दिल्ली में जो टॉप मार्केट है ना, उनके अंदर हम देते हैं और ठीक ठाक रेट हमें मिलता है। मंडी के अंदर क्या होगा कि आढ़ती के हाथ में रेट है।
1: हाँ, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते
0: हाँ, और
1: हैं
0: यहाँ हम दे रहे हैं और उसको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में रेट है।
1: जी, वो मनमाना पैसा देते हैं। तो जैसे, क्योंकि जिस तरीके से आप संरक्षित दशाओं में कर रहे हैं तो इसमें लागत भी ज़्यादा आती है,
0: हाँ जी,
1: तो जो
0: लागत
1: हमारे
0: तो
1: छोटे किसान अगर इस कार्य को करना चाहें, उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
0: उसमें हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी सहायता करती।
1: जी
0: अगर उनके पास अपना पैसा नहीं है तो वो पहले इसके लिए ट्रेनिंग करे, सीखे अच्छी तरह, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। उसके बाद बहुत सी संस्था है हर स्टेट के अंदर,
1: हर राज्य में है।
0: हाँ, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, उनसे सहायता ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी कोई बात नहीं बनती तो उसके पास जितना बजट है वो अपना छोटा काम कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक और फायदा है कि परिवार में जितने भी बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को भी आप रोजगार दोगे।
1: मतलब केवल कार्य नहीं शुरू कर रहे हैं, उसके साथ अपने पूरे परिवार के लोगों को उसमें रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे
0: अब
1: हैं।
0: ये देखो ना, हम किसी से खाद भी ले रहे हैं, बीज भी ले रहे हैं, मार्केट में भी हम मशरूम,
1: जी जी
0: तो कितने लोगों को
1: हाँ,
0: अब
1: कोई
0: जुड़े हुए
1: ग्रेडिंग
0: हैं,
1: कर
0: उनको
1: रहा है,
0: सबको
1: कोई पैकिंग
0: रोजगार
1: कर
0: मिलता है।
1: रहा है, कोई
0: हाँ,
1: उसकी कटाई कर रहा है।

0: स्पॉन मिलाने का काम करता है, मतलब पूरा बेड बनाने से लेकर के उसकी मार्केटिंग तक पूरा कार्य रहता है। लेकिन जब कोई भी कार्य किया जाता है, निश्चित तौर पे जितनी उसमें आसानियां होती हैं उतनी चुनौतियां भी होती हैं। तो इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं?
1: देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो चुनौती ये है कि आपका जो खाद है वो आप एक अच्छे उससे चुने और बढ़िया ले।
0: अच्छी जगह से
1: हाँ, जो उसके अंदर पूरा मटेरियल अच्छे तरीके से डाल दे, जिसका आपकी उत्पादन का जो परसेंटेज है वो ठीक आ जाए। अगर वो नहीं आया तो आप उत्पादन
0: विश्वसनीय
1: ले नहीं
0: जगह
1: सकते।
0: होनी चाहिए।
1: हाँ, दूसरा फिर आपके पास काम करने वाले जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक हो, उनको पहले आप अच्छे तरीके से सिखाओ, नहीं तो वो भी गलती कर देंगे तो भी नुकसान है। जो मशरूम खाद में अगर बीज मिलाना है तो टेम्परेचर देखना, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो बीज के जो कुछ प्रोसेस है कि भाई हमारा माइसीलियम फैल गया, फंगस फैल गई, तो उसके अंदर हम एक केसिंग मिट्टी मिलाते हैं, वो कैसे तैयार होती है, वो इन चीज़ों का कि हमने कितना पीएच, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है
0: जी
1: तो प्रोडक्शन के टाइम हमें खास ध्यान रखना पड़ता है ग्रेडिंग का, जो आप बात कर रहे थे कि भाई रेट की,
0: जी
1: जब आप ग्रेडिंग करोगे तो आपको रेट बढ़िया मिलेगा, तो उस टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बात आती है पैकिंग, हो गया आपका माल, फिर
0: जी
1: मार्केट भेजना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमने पैक करके रख दिया, भाई कल भेज देंगे परसों, नहीं, आज अगर हमारी मशरूम की कटिंग होनी है तो वो आज ही होगी और मार्केट भी आज ही जाएगी। स्टोरेज नहीं है इसमें, थोड़ा
0: जी
1: बहुत टाइम के लिए स्टोरेज है, नहीं तो नहीं है स्टोरेज। एक और भी है जी, कि जो शाकाहारी लोग हैं
0: जी
1: उसके लिए बड़े फायदेमंद है मशरूम। विटामिन डी मशरूम में ही मिलता है और फैट फ्री है, 0% फैट है मशरूम में। दूसरा कैंसर, बीपी और शुगर, इनमें ये हेल्पनेस है। ये हमारे जो मार्केट दिल्ली में मिलती है बटन मशरूम, ये बाकी जो मेडिसिन की है वो तो है ही अलग,
0: जी
1: मशरूम में मेडिसिन की भी है जो हर कोई नहीं खरीद सकता, कॉस्टली है, बाकी ये भी हेल्पनेस है खाने के लिए।
0: जी बिल्कुल पवन कुमार जी, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे इससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत, मशरूम उत्पादन की संरक्षित एवं आधुनिक तकनीक जिससे आप खेती कर सकते हैं। इस बातचीत में भाग ले रहे थे पवन कुमार, जो कि एक प्रगति किसान है, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, और देखिए योजना भी हमारी सरकार ने काफ़ी चलाई हुई है हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए। पहल बहन उन्हीं में से एक योजना है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि जब बूंद यानी कि जब आप फसल को बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, यानी कि पौधे की जड़ तक आप जो है जल पहुँचाते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे पूरे खेत में पानी फैल जाता है, तो पूरे खेत में पानी ना फैला करके पाइप बिछा करके प्रत्येक पेड़ किया, जैसा कि आपने बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है या गोभी के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनके पौधे की जड़ में जो पानी पहुंचाया जाता है बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा।
2: बिल्कुल, और देखिए इससे फ़ायदा भी है अतुल भाई, कि पानी की बचत भी होती है और फसल भी आपकी बहुत अच्छी होती है।
3: बिल्कुल, और देखिए बरसात का मौसम भी चला हुआ है पायल बहन, तो हम तो यही कहेंगे अपने सभी किसान बहन भाइयों से कि भाई अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में खांसी जुकाम भी हो जाते हैं, और कई बार बरसात में अगर आप भीग भीग जाते हैं तो भाई बुखार भी आपको जो है हो जाता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं तेजवीर विदुड़ी की आवाज़ में ये उपदेश।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे तेज बीड़ विधुड़ी की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे कुछ गज़ल। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे पंकज उदास की गाए कुछ गज़लों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने COVID-19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राजधानी दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने COVID-19 महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान का स्मरण और उनके परिवारों के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता सदैव सर्वोपरि रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि राजधानी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली में 2,105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
6: श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत DND से फरीदाबाद और सोहना होते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंड से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से 6 लेन की टनल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 1,04,145 करोड़ रुपए है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक महरौली गुड़गांव रोड, INA से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक एक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 917 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
7: यह डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को इस वर्ष 31 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास

0: वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी फंड चाहिए वह सरकार प्रदान करेगी।
1: दिल्ली सरकार ने भी नगर निगम को ये कहा कि जितना भी फंड लगेगा, परंतु दिल्ली सरकार की ये प्रायोरिटी है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए, दिल्ली सुंदर होनी चाहिए। किसी भी शहर की सुंदरता जो सबसे पहले आकी जाती है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था से आकी जाती है।
0: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर परवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परीक्षा में छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के विरुद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ काम करेगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना हो या प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह बताए गए फास्ट ट्रैक कोड बनाना हो, सरकार कोई भी अस्थायी समाधान या जल्दबाजी में किए जाने वाले उपाय नहीं कर रही है। एक प्रेस वार्ता में श्री सूद ने कहा कि सरकार उन सभी कमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर हाउस में सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अब स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को रोकने के लिए आज दिल्ली शाहदरा शामली रेलखंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रुपये का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई हिरासत में लेने की शक्तियां नई नहीं है, बल्कि ये शक्तियों का नियमित विस्तार या नवीनीकरण है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह आदेश हर 3 महीने में जारी किया जाता है और वर्तमान नवीनीकरण 7 जुलाई को इस वर्ष 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि ये नवीनीकरण छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित जवाब में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आज कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा माध्यम है जो देश को जानकारी देता है, प्रेरित करता है और एकजुटता करता है, साथ ही विकसित भारत की भावना को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिकों और समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्थापित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित के आदर्शों को आधार बनाकर श्रमिकों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन

जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और इसका इलाज जारी है। तथ्य जांच इकाई ने बताया कि उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपुष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया। अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है गीत मालिका में फिल्म संगीत का। तो आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, प्रोग्राम चालू करते हैं। साथ अगर हम सफ़र हो तो डगमगाते हुए भी समल जाते हैं कदम। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर हमारे साथ हमारा हम सफ़र साथ चल रहा है तो हम किसी भी मुश्किल वक्त में हंसते हंसते निकल जाते हैं।

साथियों, किसी से दिल लग जाए क्या वो प्रेम है? नहीं, लेकिन किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ठोकरें ही सिखाती हैं हमें संभलना और चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म दीवाना से ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, अब सुनिए समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाए।

0: लगती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति

सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से

0: मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार
0: संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के

0: नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ

0: 23वीं दौलत मुश्तरक गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर JP नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहानात के वक़ार को मजरूह करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत

और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तिरा समेत अहम शुबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फ़रोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इकतदी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज़।

मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी, जिनमें लवलीना भी शामिल हैं, को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बिरमिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं। भारतीय दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा।

कुछ दर में शोले ही शोले दिल है आखिर कैसे न डोले हाय देखो जी दर में शोले ही शोले दिल है आखिर कैसे न डोले हाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय

द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, अंदरप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत की सुनहरी। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म गीत और जिसे कि हम गोल्डन एरा के गीत कहते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें उस सुनहरे पलों की तो उस समय इतने प्यारे प्यारे गीत कंपोज किए गए कि आज भी उन गीतों को सुनूं तो वही ताजगी नज़र आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसकी में आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, बोल है शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से हमने ये गीत चुना है।

और अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत राई से। भी आप ये गीत सुन रहे थे।

0: और लीजिए अगला गीत पेश है फिल्म मंजिल से, आवाज़ गीत अदत और मोहम्मद रफ़ी की, बोल है मजनू के और संगीत से सजाए है SD बर्मन ने।
1: कैसे मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे, रुम झुम रुम झुम।

जी अगला गीत पेश है मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत से सजाए शंकर जयकिशन ने और शैलेंद्र के बोल हैं, फिल्म बोल हैं आ अब लौट चलें, फिल्म है जिस देश में गंगा बहता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के फिल्म गीत, और इन्हीं सुनहरे गीतों को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म बरखा से गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: ढाल आ जाए मेरा सुरमा अगर ऐसे तुझे अंधा लगाएगा तो अंधे को अंधेरे में बहुत कुछ सूझ जाएगा।
1: सुरमा क्या है जादू मंत्र
0: आपके मुंह में घी शक्कर जो भी चाहो ले लो साईं पैसे की सब बात है पैसा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की सुनहरी गोल्डन एरा की फिल्म संगीत। 2 बजने को है, अब लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

0: शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटान करना है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that the paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. Meanwhile, Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Baliga at the Roos Avenue Court will function as a specially designated fast-track court. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at these Hazare courts, has been transferred to the Roos Avenue Court as a special judge for the purpose. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to the media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind with the residents of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक आफ्टर 26 डेज एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन गुरुग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि यांगमो एंड सीनियर लीडर्स ऑफ एपेक्स बॉडी ऑफ लेह लद्दाख वर आल्सो प्रेजेंट एट द हॉस्पिटल Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchung said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing

0: में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. Meanwhile, the Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the Court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court. Ms. Baliga, who was serving as a judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Rouse Avenue Courts, a special judge for the purpose. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram a short while ago in the presence of UN ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife Gitanjali Yangmu and senior leaders of APEC's body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Prime Minister Narendra Modi has urged social activist Sonam Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. In a social media post, Mr. Modi prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. Mr. Wangchuk went on a hunger strike on the 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. India and Romania today signed 3 agreements for cooperation in the fields of science and technology, education and sports. The agreements were signed after delegation-level talks between President Draupadi Murmu and her Romanian counterpart Nicușan Dan in Bucharest. In a press statement, President Murmu said India and Romania have shared a close and enduring friendship for over 7 decades, based on mutual trust, respect and strong people-to-people ties. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Mark, Raji Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Mark, Barakamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Jhandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available

शफक कहते हैं किरणों को रेस और धनुक रेनबो महताब चंद्रमा घटाएं तो आपको मालूम है शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

News 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है, अब होगा भक्तमय संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप सुनेंगे कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित भक्तिमय संगीत।

0: वीणा के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: प्रथम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना भक्ति में संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे थे

आकाशवाणी दिल्ली के IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर रात के 4:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे आज कर्नाटक म्यूजिक, जिसमें मिनियन का गायन सुनेंगे आप।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आपने सुना मिनी एन का गायन राग कल्याणी में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज कौन कौन से कार्यक्रम आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास, प्रेक्षा और आसन। पाँच बजकर 20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे अजय मिश्रा का गायन राग भूपेश्वरी में।

0: सुबह 6 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और उसके बाद 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा। भक्तिमय संगीत का एक कार्यक्रम 6:40 तक आप सुनेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ होगा। 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे। सात बजकर 10 मिनट पर सुबह कार्यक्रम होगा संगीतिका का और 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, ये तो थे कार्यक्रम जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित आसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में।